0: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, always heart touching. आप लखानदेश, आपली मानसर.
1: 90.8 FM रेडियो मन भावन पर कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, जब हम बाजार से कोई कीमती और नायाब चीज खरीद लाते हैं तो हम उसे कितनी हिफाजत से रखते हैं. हम उसे किसी सुरक्षित कोने में सहेजते हैं ताकि उस पर कोई खरोंच तक ना आए, क्योंकि हम जानते हैं कि वह चीज़ दोबारा नहीं मिलने वाली. लेकिन कितनी अजीब बात है कि जो जीवन हमें मिला है, जो इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे अनमोल और दुर्लभ कृति है, उसकी कद्र करना हम भूल जाते हैं. हम ऐसे खर्च कर रहे हैं जैसे यह कभी खत्म ही नहीं होगा. कबीर साहब आज हमें इसी जीवन की असली कीमत बताने आए हैं. वे हमें प्रकृति के एक सीधे से नियम के जरिए समझा रहे हैं कि जो अवसर एक बार हाथ से छूट जाता है वह फिर कभी लौटकर नहीं आता. आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह अमर दार्शनिक सूत्र. मानुष जीवन दुर्लभ है, देहन बारंबार, तरवर थे फल झड़ी, तरवर थे फल झड़ी पड़या, बहुरी न लागे डार.

0: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, अलवेज हार्ट टचिंग। आपले खानदेश, आपली मानस।
1: 90.8 FM रेडियो मन भावन पर कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जब हम बाजार से कोई कीमती और नायाब चीज खरीद लाते हैं तो हम उसे कितनी हिफाजत से रखते हैं। हम उसे किसी सुरक्षित कोने में सहेजते हैं ताकि उस पर कोई खरोंच तक ना आए, क्योंकि हम जानते हैं कि वह चीज़ दोबारा नहीं मिलने वाली। लेकिन कितनी अजीब बात है कि जो जीवन हमें मिला है, जो इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे अनमोल और दुर्लभ कृति है, उसकी कद्र करना हम भूल जाते हैं। हम ऐसे खर्च कर रहे हैं जैसे यह कभी खत्म ही नहीं होगा। कबीर साहब आज हमें इसी जीवन की असली कीमत बताने आए हैं। वे हमें प्रकृति के एक सीधे से नियम के जरिए समझा रहे हैं कि जो अवसर एक बार हाथ से छूट जाता है, वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह अमर दार्शनिक सूत्र। मानुष जीवन दुर्लभ है, देहन बारंबार, तरवर थे फल झड़ी, तरवर थे फल झड़ी पड़या, बहुरी न लागे डार।

श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, मानुष जीवन दुर्लभ है, देह न बारंबार। यह जो मनुष्य का जीवन तुम्हें मिला है, यह अत्यंत दुर्लभ है। न जाने कितनी योनियों की यात्रा के बाद चेतना को यह सुंदर मानव देह मिलती है। यह शरीर तुम्हें बार बार मिलने वाला नहीं है। यह कोई साधारण वस्तु नहीं है जिसे जब चाहा तब बदल दिया। इस बात को गहराई से समझाने के लिए कबीर अगली पंक्ति में एक सुंदर रूपक देते हैं। तरवर थे फल झड़ी पड़ा, तरवर अर्थात वृक्ष, पेड़। जैसे किसी वृक्ष से कोई पका हुआ फल एक बार टूट कर नीचे गिर जाता है तो उसकी नियति क्या होती है? बहुरी न लागे डार। बहुरी यानी दोबारा। वह फल चाहे कितनी कोशिश कर लें, चाहे जितना रोए चिल्लाए, वह दोबारा उस वृक्ष की डाली पर जाकर नहीं जुड़ सकता। उसका डाली से नाता हमेशा के लिए टूट चुका है। अगर इसे दार्शनिक दृष्टि से समझें तो यह दोहा केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह समय की अखंडता और जीवन के उत्तरदायित्व का बोध कराता है। भारतीय दर्शन में मानव शरीर को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है, क्योंकि यही एकमात्र योनि है जहां जीव कर